जी सोने सजनो, आज इतवार दी दीवार है, जैको असा संडे भी आखते हैं, ते जुलाई दे महीने दी 19 तारीख है, सफर अल मुजफ़र दे महीने दी 4 तारीख है, ते सावन दे महीने दी भी 4 तारीख है। जी सही, सावन किण मिण लाई, लेकिन फिलहाल तो जरा है सावन गर्मी वसें दा खड़ा है। सावन दे विच जरी है गर्मी डाढ़ी धूड़दी है पई, किण मिण ताजन नहीं लगी। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह ताला इन गर्मी दी शिद्दत को काम कर छोड़े, ते कितें कोई में रहमत अली बदली असारी तरफ भेज देवे, जरी आ के ते थोड़ी किण मिण ला देवे, ठंडी ठंडी हवा चलन लग वे, ताकि जरी गर्मी दी शिद्दत है उंदी विच थोड़ी कमी आ वे। असारे नन्ने मुन्ने बाल जरे हैं, सारे नौजवान जरे हैं, जरे असारे बुजुर्ग बुढ़े जरे हैं, उन्होंने चेहरों के उत्ते जरा इवें खुशी की लहर दौड़ पवे। रब सोने को दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रहम ते अपने करम का मामला फरमावे। जी सही, उम्मीद करे ना हाँ कि सारे सजन ठीक हो सो, खैर ते आफियत दे नाल हो सो। ते जेरे सजन ने हुण असें को ट्यून कीता रेडियो आन कीता, या वल सै को असें रेडियो अमन दी

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट
2: दिस इज रेडियो स्टेशन रेडियो अमन
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
4: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
5: ओ डाला सी जाना पर रुक राम दरा

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्तर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 0313 91 27 273।
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
5: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343 912 1745.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

इसी तरह से अगर आप घर में सोए हुए हैं, रात का वक्त है, तो आपको लगता है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका मकसद भी ठीक नहीं है उसके, क्योंकि जाहिर है रात को अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तो उसके अगर इरादे ठीक नहीं है और वो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वार्न करें, अगर वो नहीं रुकता तो आप उसको शूट कर दें। ये भी कानून आपको इख्तियार देता है कि आप उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, खवातीन आपके साथ हैं, और कोई खवातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और आपको अंदेशा है कि खुदा न खास्ता ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास असलहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आप उसको शूट कर सकते हैं ऐसे शख्स को। ये कानून आपको मुकम्मल इस चीज़ की इजाज़त देता है, तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है, बल्कि कानून आपको इस हद तक भी तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है कि अगर आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, रोड पे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को लूट रहा है, आपको नहीं लूट रहा, या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो मुलजिम है, वो जो काम कर रहा है, उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपके पास अगर असलहा हो तो वो लाइसेंस्ड असला हो। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा साथ रखें, लेकिन लाइसेंस्ड असला। अब ये हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप लाहौर में हैं, आप वहाँ तो रात को 2 बजे 3 बजे आप घूम रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता। लेकिन हमारे इलाकों में आजकल जो है वो हालात बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी जो मैंने समझा कि मैं अपनी आवाम तक रखूँ, आवाम को बताऊँ कि जी जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर रियासत उसमें नाकाम होते हुए हमें नज़र आती है या नज़र आए तो वहाँ पे आवाम अपने आप को ख़ुद भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं बयान करना चाहूँगा वो है एतबार। आजकल आप यकीन, एतमाद, एतबार किसी पे भी ना करें। आजकल आपका दोस्त, आपका करीबी जानने वाला वही आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपको एतमाद में, एतबार में संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में ऐसा वाकया हुआ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मेरे करीबी लोगों ने पहुंचाया। अब वो चूँकि आपको एतमाद होता है, आपको यकीन होता है, आप खुद को जो है वो तैयार नहीं रखते किसी भी ख़तरे के लिए, और आप उस एतमाद में जाके जो है ना वो उसमें चले जाते हैं, उस फ्लो में, और फिर आपको संगीन नुकसान का। और आजकल टांग में अगर आप देखें तो हर दूसरा तीसरा जो वाकया हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई करीबी जानने वाला दोस्त अहबाब में से कोई ना कोई शामिल होता है। तो इस तरह से जो है आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम तो खुद को करना है, तहफ़्फ़ुज़ खुद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन साथ में अपना अकल भी इस्तेमाल करना है, अकल व फहम से काम लेना है, आपने दिमाग अपना खुला रखना है और सोच समझ के आपने फैसला करना है। ज़्यादा जो है वो आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, किसी पे यकीन नहीं करना, वरना आपको आजकल के हालात में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अच्छा, तो एफआईआर दर्ज करवाते वक्त अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि बहुत सारे वकूए ना मालूम होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन पश्तों का इलाका है, रिवाज है, लोगों को पता जरूर चल जाता है कि मेरा मुजरिम कौन है, किस कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ ये काम किया है। लोगों को इस चीज़ की खबर ज़रूर होती है कि मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन चूंकि जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है उसने अकेले में ढूंढ के पहुंचाना है, तो चश्मदीद गवाहान जो हैं वो पराए लोग होते हैं, अपने बहुत कम होते हैं। लेकिन कानून कहता है, कानून की मंशा है कि गवाहों के बगैर आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान में सजाएं वैसे ही कम हैं, 98% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। उसमें जो 2% लोग हैं जो सजा होते हैं, उनमें चश्मदीद गवाह का होना बहुत जरूरी है। अब चश्मदीद गवाह जब आता है अदालत में या एफआईआर में, तो उसने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। वो सबसे पहले कि उसने जब गवाही देनी है तो वो गवाही उसने ऑन ओथ देनी होती है, यानी कसम उठा के देनी होती है, उसने अल्लाह की कसम उठा के फिर उसके बाद वो गवाही देनी होती है। फिर यहां पे लोग कहते हैं कि अगर हम गवाह डाल देंगे तो कल कला झूठी कसम उठानी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें। तो भाई ये कानून की मंशा यही है, कानून का बुनियादी उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि गवाही आपने कसम खा के ही देनी है, और गवाह नहीं है तो आपको आपका मुलजिम भी पता है वो छूट भी जाएगा। तो यहां पे छूट झूठी गवाही का फिर आंसर सामने आता है, तो उसकी किसी मौलवी साहब से आप पूछे वो आपको सही वजाहत देंगे, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ कानून बताने बैठा हूं जो कि इंतहाई जरूरी है। गवाही क्यों जरूरी है कि अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक ने जो जुराइम और उनकी सजाएं तजवीज की हैं बताई हैं, तो उन सजाओं को दिलवाने के लिए अल्लाह पाक ने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि जी आपने अगर किसी जुर्म को साबित करना है और उस पर हद का लागू होना, हद क्या मतलब, वो सजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में बता दी है, उस सजा को दिलवाने के लिए क्या तरीकाकार फॉलो किया जाएगा, ये हमें कुरान बताता है। अब अगर आप मोटी मोटी मिसाल लें और जिना की एग्जांपल लें, मिसाल को अगर आगे रखें, तो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसको संसार किया जाए अगर वो शादीशुदा है। अब संसार करने के लिए जो क्राइटेरिया बता दिया है वो 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे जो पूरा उतरते हों उनके बारे में बता दिया। अब 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे पूरा उतरने के मुताबिक मतलब यह है कि 4 लोगों ने उनको जिना करते हुए देखा है, और वो 4 मर्द जो हैं वो बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। अब इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखने का मकसद ये था कि कोई किसी पे झूठा इल्जाम जिना का लगा के उसको सजा ना दिलवाए। तो आजकल के दौर में आपको ऐसे 4 लोग कहां मिलेंगे। तो इससे हमारे जो कानून है पाकिस्तान का वो इसी चीज से जो है इनसार लेता है, इसी चीज से तकवियत लेता है कि जहां पे कुरान ने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा है किसी जुर्म को साबित करने का, वहां पे हमारे कानून ने भी फिर सख्त क्राइटेरिया रखा है जुर्म को साबित करने का। क्योंकि कानून ये देखता है कि एक बेगुनाह अगर सजा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उससे बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को बरी कर दें। एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को सजा दे दें। मैंने बारहा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस में देखी ये बात, यानी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, शायद इतना 3.5-4 साल ही मैं प्रैक्टिस से मुझे जुड़े हुए हो गए। इसमें एक चीज मैंने देखी है कि मेरे सामने कोई तकरीबन 10-12 ऐसे केसेस गुजरे होंगे जिसमें सजाएं हुई हैं, कत्ल के केसेस जिसमें उम्र कैद, एक आध अगवा का केस था जिसमें 10 साल सजा हुई, बाकी वो कत्ल के केसों में जो सजा हुई है, तो वो सजाएं मैंने देखी, तो उन सजाओं में तकरीबन हमारे पास 10 केसेस मुझे याद पड़ते हैं। उन 10 केसेस में एक केस जो मेरे सामने गुजरा उसमें 100% बेगुनाह शख्स को उम्र कैद की सजा हो गई। अब वहां पे बेगुनाह शख्स जो है वो सजा हो गया, कत्ल किसी और ने किया था उसकी फैमिली में से, दावा उस पर हो गया, बाद में साबित हो गया केस और उसको सजा मिल गई। अब ऐसी सूरत में अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है तो ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की सूरत में नुमा हो जाता है। इसीलिए रियासत की कोशिश होती है कि वो बेगुनाह को सजा देने के बजाय 100-150 गुनहगारों को खैर छोड़ दें,
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا ہے تو وہ سال ڈیڑھ جیل میں گزارے اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا دلوانے کا کرائیٹیریا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس تمام تر کرائیٹیریا پہ آپ پورے اتر آتے ہیں, وہ تمام تر لوازمات آپ پورے کر لیتے ہیں, تو پھر سزا آپ کو دلوائی جائے گی اور اس کی بنیاد آپ خود رکھتے ہیں. پھر لوگ وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ ملک میں سزائیں نہیں ہیں, عدالت ہے. کوئی کہتا ہے عدالت ایک بھوسے کی مانند ہے, وہ اٹھاؤ جیب میں ڈالو چلے جاؤ. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, مختلف قسم کی آراء جو ہیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں کی. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ریاستی مشینری کو جو سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور آپ نے سرے سے کیس کی بنیاد غلط رکھی. اگر آپ ایف آئی آر درج کرنے گئے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے, اس کے گھر کے تین بندے بھی ساتھ میں نومینیٹ کر دیتے ہیں, بے گناہ, آپ کا کیس کا بیڑا غرق وہیں پہ ہو جاتا ہے. چشم دید گواہ نہیں ڈالتے, ڈر کے گواہی نہیں دیتے کہ جی قسم اٹھانی پڑے گی, کیس کا بیڑا غرق وہاں پہ ہو جاتا ہے. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پشتوں کا علاقہ ہے, تج مج والی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ نہ نہ یہ وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی غیرت سامنے آ جاتی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, میں اپنا بدلہ خود لوں گا, زبق پلخ پر بدلہ پلا خالا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ پولیس تھانے چلے گئے ہیں, آپ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, تو ایف آئی آر کو سوچ سمجھ کے درج کروائیں, کیونکہ آپ کے پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ایف آئی آر سے شروع ہوگی.

इसके अलावा जो हमारे पास दीवानी नौयत के बहुत सारे मुकदमात आते हैं, फैमिली केसेस को फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दीवानी नौयत के मुकदमात आते हैं उसमें एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है। मसला यह है कि लोग स्टैम्प पेपर पर जमीन खरीदते चले जाते हैं, आगे बेचते चले जाते हैं, असल मालिक जो है वो अपनी जगह कागजात में वैसे ही पड़ा होता है। हमारे टांग शहर में ऐसे बहुत सारे अभी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं जिसमें जमीन अभी तक नवाब के नाम पे पड़ी हुई है, जो असल नवाब था टांग का। अब बहुत सारे लोग उठ के मुकदमात कर रहे हैं, उस जमीन को क्लेम कर रहे हैं, हालांकि वो जमीनें बिक चुकी हैं, नवाब साहब ने बेच दी होंगी, लोगों ने घर, और लोग 50-50, 40-40 साल से उन घरों में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास घरों के कागजात नहीं है। अब जब घरों के कागजात नहीं है लोगों के पास, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब आपके पास घर का कागज ही नहीं है, आपके पास घर की कोई रजिस्ट्री नहीं है, आपने अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किया, तो कल कल अदालत ये देखती है कि अच्छा ये तो उस बंदे के नाम पे पड़ा हुआ है जो असल मालिक था, तो अदालत जो है हो सकता है आपका दावा खारिज कर दे और उसको उसका घर वापस दिलवा दे, अगर वो ये साबित कर दे कि ये इसने बोगस तरीके से कब्जा किया हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वक्ती तौर पे इंतकाल की फीस से बचने के लिए, वक्ती तौर पे रजिस्ट्री की फीस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, लोग स्टाम्प पेपर पे घर खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, इंतकाल की तरफ नहीं जाते, रजिस्ट्री की तरफ नहीं जाते कि फीस ज्यादा है। फीस को अगर चाहते हैं कि फीस कम हो तो आप खुद को फाइलर कर लें। फाइलर करना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ना ही आपके लिए कोई उससे कोई नुकसान का सबब बनता है। आप खुद को फाइलर करें, फाइलर करने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं, थोड़ी सी फीस पे जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाएं। इसमें एक और बहुत बड़ी तकलीफ होती है, आपने एक शख्स से जमीन खरीद ली, वो जमीन आपने स्टाम्प पेपर पे खरीद दी, कब्जा आपके पास है, आप इंतकाल नहीं कर रहे फीस से बचने के लिए। कल कल वो शख्स मर गया, वो जैसे मरेगा उसका विरासती इंतकाल होगा, जब विरासती इंतकाल होगा तो वो जमीन एक शख्स से तकरीबन 10-15 लोगों में तकसीम हो जाएगी कागजों में। अब जब आप इंतकाल करवाएंगे तो आप 10 लोगों से फिर इंतकाल करवाएंगे, और 10 लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पर अंगूठे लगा के देंगे, आपके साथ कोई आएगा कोई नहीं आएगा, मसले। तो ये दीवानी मुकदमों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फल जाती हैं, बहुत सारी गलतियां जो है दीवानी मुकदमों को खराब करने में लोगों की अपनी होती हैं। लोग खुद इतना एहतियात नहीं बरतते, लोग खुद वहां पे जो है इस तरह के काम नहीं करते, कल कल फिर कानूनी पेचीदगियों का सामना होता है। क्योंकि अगर वो शख्स मर गया जिसके नाम पे जमीन है या घर है या रजिस्ट्री है और आपने अपने नाम पे मुंतकिल नहीं की हुई, तो घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप अदालत से रुजू करेंगे, अदालत आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगी, उसमें आपके तकरीबन 8 माह 9 माह 1 साल निकल जाएगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो तमाम घर जो है रजिस्ट्री होगा उसके तमाम बच्चों के नाम पे, जब बच्चों के नाम पे हो गया, लेट से उसके 8 बेटे हैं 7 बेटों के नाम पे 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के नाम पे हिस्सा रजिस्ट्री हो जाएगा, उसमें 4 बेटियां शादी हैं, कोई कराची में बैठी हुई है, कोई जॉब में बैठी हुई है, कोई पराचिनार में बैठी हुई है, कोई वजीरिस्तान में बैठी हुई है, किसी बेटे की शादी है वो दुबई में होता है, कोई सऊदी अरब में होता है, कोई कतर में होता है, कोई टांक में होता है। अब आप इन सबको यकजा करें तो ये आपको जो वो आपने वहां पे 1-1.5 लाख रुपए बचाने के लिए उस वक्त रजिस्ट्री नहीं की होती, फिर बाद में आपको उसी रजिस्ट्री को करवाने के लिए उसके ट्रिपल पैसे लगवाने पड़ते हैं, 4 गुना 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और तकलीफ का सामना। एक एक को मिन्नत करोगे, उसमें एक भाई इनकार ही होगा कि भाई मेरे बाप ने तो ये घर बेचा ही नहीं था, फिर आप क्या करेंगे? कब्जा आपके पास हो भले ही, कागजों पे तो नहीं है। तो ये मुझे देखने और सुनने वालों से मेरी इस्तदा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी जमीन की लेन देन करें, घर खरीदें, जमीन खरीदें, दुकान खरीदें, तो सबसे पहला काम, या गाड़ी खरीदें, अक्सर लोग गाड़ी मोटरसाइकिल, मेरे अपनी मोटरसाइकिल मेरे पास है लेकिन वो लकी किसी बंदी के नाम, बंदे के नाम पे, अब मैं कहां उसको ढूंढता फिरूंगा कि लकी में वो कौन था, किसके नाम पे थी। तो ये सबसे पहला अमर जो आपने करना है, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, कुछ भी खरीदने के बाद, घर खरीदा, जमीन खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी खरीदी, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फिल फोर उसको अपने नाम पे मुंतकिल करना है। आपके नाम पे होगी तो आपको फायदा, आपके नाम नहीं होगी आपको नुकसान, और उस नुकसान का जो बड़ी बात है नुकसान की, वो क्या होगी कि आपकी जो ओनरशिप है वो डिस्प्यूट हो जाएगी, डिस्प्यूटेड हो जाएगी, उसमें तनाजा आ जाएगा, और कर कला जब आप वो चीज़ बेचना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। होप सो आपको मेरे
پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے، میرا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں، 03-999-852-0300-8999-852. اس پہ کال کر کے آپ جو ہے میرے سے اپنے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں. باقی اجازت دیجیے، ان شاء اللہ ملاقات رہے گی آپ سے اگلی اتوار کو دن 12 سے 1 تک. خدا حافظ.

लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342 311 2292 पर कॉल कर

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the soul listeners of Global FM 91, Deer Radio Pagram 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज और ये

आसान कर लिया आप लोगों के लिए किताबों को पढ़ना, और आप पीडीएफ आप गूगल में जाएं, तारीखी कुतुब जो है, आपको तारीखी तारीख के हवाले से, आप मुल्क के हवाले से तारीख को देखना चाहते हैं, आप जो है इस्लाम के हवाले से तारीख को देखना चाहते हैं, आप अंबिया के हवाले से देखना चाहते हैं, आप खुलफाए राशिदीन के हवाले से देखना चाहते हैं, आप बादशाहों के हवाले से देखना चाहते हैं तारीख को, तारीख को पढ़ना, जितने किताबें पढ़ेंगे हर रोज असासा एसेट आपके दिमाग के अंदर, आपके मेमोरी के अंदर जमा होता रहेगा। फिर लोग आपकी कदर करेंगे, जब आप किसी महफिल में बैठेंगे और चार बातें आपको पता होंगी और किसी भी मौजू के ऊपर बात हो रही होगी और आप अपनी तरफ से अथेंटिक बात करेंगे तो 10 लोग आपकी तरफ हैरानी से देखेंगे, अच्छा जी इस बंदे को इतना भी नॉलेज है। तो ये क्यों कम होता जा रहा है कि हम बुक्स नहीं पढ़ते, हम मुतालिया नहीं करते, हम किताबों को नहीं पढ़ते? यही वजह है कि हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दूसरे लोगों के, और दूसरे लोग जो है हमें बहुत बड़े नजर आते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जो अपना इल्म बिखेरते हैं। आप भी उतना ही इल्म हासिल कर सकते हैं, आप भी इस मोहताजी से खुद को निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप रोजाना आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जो है मुताले को भी अगर

जी जनाब, केसन नेचुरल पाकिस्तान और केसन के हर एक प्रोडक्ट कुदरत के खजानों से बनी हुई, और ऐसे कुदरत के खजाने जो आपको सेहतमंद बनाते हैं, जो आपको सेहत बख्शते हैं, जो आपको शिफा बख्शते हैं, जो आपको हसीन और खूबसूरत बनाते हैं। जनाब, उन्हीं अनमोल खजानों का जिक्र हमारी हर एक प्रोडक्ट के अंदर होता है, और हमारे आने वाली प्रोडक्ट इतनी ही खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, और इतनी ही आपको शिफा देने वाली, आपको सेहत देने वाली, आपको ताकत देने वाली, और आपको बहुत सारी छुपी हुई बीमारियों से निकालने वाली ये प्रोडक्ट है। और इंशाल्लाह अगले एक दो दिन के अंदर आप लोगों के सामने उस पर से पर्दा उठाएंगे, और आप

0: कि शहर टांक, पहाड़पुर और डेरिस मिल खान समेत हर एक जगह पर उसको अवेलेबल कराएंगे और उसका एक दिन का इस्तेमाल आपको अगले दिन बताएगा कि आपने एक दिन ये चीज इस्तेमाल की है केसन की, वो कितने फायदेमंद थी और 24 घंटे के अंदर उस प्रोडक्ट ने आपके जिस्म में जाकर कितना बड़ा किरदार अदा किया है और आपको हमारी तारीफ करने पर मजबूर किया है कि केसन ने आपको इतनी प्यारी प्रोडक्ट बनाकर दी है। तो वेट करेंगे सिर्फ 1 से 2 दिन, ज्यादा नहीं। गर्मी की मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ और केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कुदरत के करीब हैं। उन्हीं में से हमारा जो केसन का जाफरानी फार्मूला है ना, वो कुदरत के अनमोल खजानों में से एक खजाना है। और इससे हमने साबुन बनाया है, इससे हमने क्रीम बनाई है। जाफरान को ये इज्जत हासिल है, जाफरान को ये शान हासिल है, जाफरान को ये मकाम हासिल है कि वो जिस चीज में भी होगा उसकी शान, उसकी इज्जत, उसका मकाम बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज है। और कीमती चीज जिस भी चीज के अंदर होगी, सोना बहुत कीमती चीज है ना, 4.5 लाख का तोला है, उससे बनी हुई कोई भी चीज हो ना, अहमियत की हामिल होगी। चाहे किसी औरत ने 2 तोले का हार पहना हो या 2 माशे की एक रिंग पहनी हो या फिर कानों की कोई चीज पहनी हो, सोना सोना होता है, ठीक है जनाब। और कहने वाला मुतासिर होता है कि इसने गोल्ड की कोई चीज पहनी हो। ये तो इसी तरीके से जो नेचुरल अज्जा है ना, कुदरती अज्जा जो हैं, ये बेसिकली उनके अंदर जो सोने की अहमियत रखता है वो जाफरान है। जाफरान कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बनाई है जो कि आपकी स्किन को निखारने का काम करता है, ठीक है जनाब। एक स्किन आपकी, जिस तरह सोना पहनने से औरत की शख्सियत में खूबसूरती आ जाती है, आप नजर भर के देखते हैं कि इसने सोना पहना हुआ है, इस तरह इंग्रेडिएंट्स में जाफरान को बड़ी अहमियत हासिल है। और इसके जो फायदे हैं, मुस्तकिल खूबसूरती इसका एक फायदा है, कुदरती निखार इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है जनाब। एंटी ऑक्सीडेंट ये काम करता है। और हमने इसको आपको बनाकर दिया है जनाब किस चीज के अंदर, साबुन और क्रीम के अंदर हमारा जाफरान को ऐड करके दिया। जाफरान सुबह मॉर्निंग शो में भी हम जिक्र कर रहे थे जाफरानी साबुन के हवाले से। जाफरानी साबुन जो है सामिनी कराम, एक तो ये आप 2 तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे बाल भी धो सकते हैं, बालों को धोएंगे, बाल आपके जड़ों से मजबूत होते हैं जाफरान से। जाफरान के अंदर एक जो एलिमेंट है वो कुदरती तौर पर चमकदार बनाता है स्किन को, चाहे बालों की स्किन हो या आपकी जिल्द हो, दोनों को चमकदार बनाता है, निखार पैदा करता है, सिल्कीपन लाता है आपके बालों के अंदर। तो जाफरान का जो हमारा साबुन है, 250 रुपए का ये साबुन है, ठीक है जनाब। स्किन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें हैं। संदल है जो कि ठंडक का एहसास देता है, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, और जब जैसे कि गर्मियां हैं तो आपके स्किन को भी ठंडी चीजों की जरूरत है। तो इस सूरत हाल में भाई झुलसी हुई जो स्किन है, आप धूप के ऊपर ज्यादा रहते हैं, आपका काम ज्यादातर धूप का है। सईद रहमान जो है कोट दौलत से इस वक्त जो फेसबुक लाइव के ऊपर मुझे फूलों का दस्ता पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और ऐसे लोग जो सारा दिन धूप में होते हैं, जो अपना चेहरा एक्सपोज करते हैं सूरज के सामने, वो अगर ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह निकलते वक्त जाफरानी साबुन से चेहरा धोएं और वापस आते वक्त जाफरानी साबुन से चेहरा धोएं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलता है। आपकी स्किन जो है गर्मी के अंदर, वो हमारा एक ट्रैक भी बना हुआ है ना जाफरानी साबुन के हवाले से, वो अगर मुझे अगर मिल जाए, हमारे चैनल के ऊपर हमारे ट्रैक्स मौजूद हैं, आप वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
1: रंगत

0: रब की इनायत है जाफरान जनाब, और जब आप जाफरानी साबुन इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर आपके चेहरे के ऊपर एक निखार आएगा। आपकी काली रंग जो धूप की वजह से हो रही है वो यकसा तौर पर आपकी स्किन को ठीक करने का ये काम करता है। बाल इसे आप धो सकते हैं जनाब, ठीक है जनाब, आप शैम्पू की जगह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके देखिएगा ये कितना फायदा आपको पहुंचाता है। दूसरा तीसरा जो इसका बेनिफिट है जनाब, गर्मी के अंदर जो अब जो पसीना बहुत ही ज्यादा आता है तो पसीने की वजह से बदबू होती है। जाफरानी साबुन का एक कमाल ये है कि अगर आप इसे बाल भी धोएंगे तो शाम तक आपको अपने सर में से इसकी महक आती रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बदबू आती है पसीने की, तो जाफरानी साबुन से आप नहा सकते हैं और बदबू को खत्म कर सकते हैं। दूसरा जनाब, जिल्द की हिफाजत का ये काम करता है। केसन जाफरानी साबुन जो है ये जिल्द को एक तो सूर्य की खतरनाक शुआओं से बचाने वाला साबुन है, ठीक है जनाब। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने निकलते हैं, चाहे वो गर्मी, अच्छा गर्मी दानों के लिए ये बहुत ही अमेजिंग साबुन है, ठीक है जनाब। इस मौसम के अंदर बहुत सारे लोगों को गर्मी दाने निकलते हैं फोरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर भी, तो इससे अगर आप वॉश करते हैं, नहाते हैं, तो चूंकि सैंडल की ठंडक इसके अंदर मौजूद है तो आपकी स्किन को चूंकि ठंडक चाहिए तो गर्मी के अंदर ये एक आइडियल साबुन है, ठीक है जनाब। और ये जो जाफरान है, ये जो हल्दी है, या ये जो इसके अंदर संदल है, ये सिर्फ नेचुरल सोप के अंदर ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है जनाब। ये जो बाजार से आपको साबुन मिलते हैं ना, ब्यूटी सोप जो होते हैं, जो बाजार के ब्यूटी सोप होते हैं, उनके अंदर ये चीजें आप शामिल नहीं कर सकते, ठीक है जनाब, ये चीजें शामिल नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो हम आपको साबुन तैयार करके दे रहे हैं, जैसे कि टी ट्री और नीम का साबुन है गो पिंपल की सूरत में, इसी तरीके से जाफरान का साबुन जाफरानी के मौजूद है, गोट मिल्क का साबुन जो है वो मिल्की सोप की सूरत में मौजूद है, उपटन सोप जो है वो उपटन साबुन की सूरत में मौजूद है, इसी तरीके से कोजिक एसिड यानी चुकंदर से बना हुआ भी साबुन मौजूद है, और इसी तरीके से जो है अदर जैसे कि राइस है वो भी है। अच्छा, इसी तरीके के साबुन आप क्या घर में बना सकते हैं, इसका क्या ये अगर सवाल किया जाए तो क्या जिस तरह केसन साबुन बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है, क्या इसी तरीके के साबुन आप खुद से बना सकते हैं? तो इसका जवाब एब्सोल्युटली यस है, क्योंकि जनाब इस साबुन बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो होती है सोप बेस, ठीक है जनाब। और इस वक्त डेरा इस्माइल खान में हमारी बहुत अच्छी सेल हो गई है, हमारी सोप बेस आती है आधे किलो के अंदर, ठीक है जनाब। केसन मेल्ट एंड पोर ग्लिसरीन सोप बेस इसका नाम है, मेल्ट एंड पोर यानी इसको पिघलाएंगे और पिघलाकर सांचे में डालकर आप अपनी मर्जी का साबुन बनाएंगे। आधे किलो की पैकिंग होती है, अब आधे किलो से आपके 7 साबुन बनते हैं चेहरे को धोने वाले, आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह केसन का जाफरानी साबुन है, कुछ लोग कहते हैं ना भाई जाफरान तो बहुत महंगा है, केसन वाले कैसे बना के दे रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग जिनको हमारे ऊपर यकीन है तो वो तो खरीद रहे हैं जाफरानी साबुन, जिनको लगता है कि भाई ऐसा नहीं है तो फिर वो हमारी सोप बेस खरीदें आधे किलो की, 750 रुपए का आपको आधा किलो मिलेगा, ठीक है, घर में ले आए। क्या करेंगे, साबुन बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि साबुन केसन कंपनी कैसे बनाती है और आप घर में कैसे बना सकते हैं। अपने घर में आप साबुन बना सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए भी, और उसी को अगर कारोबार बनाना चाहें तो उसको बेच भी सकते हैं। हमारी सोप बेस आती है केसन की आधे किलो के अंदर, ग्लिसरीन सोप बेस आधा किलो आपको मिलेगा 750 रुपए का। आप उसे घर लेकर आए, 2 बर्तन लें, एक बर्तन के अंदर पानी डालें और नीचे से उसको हीट दें, यानी कि वो पानी उबलना शुरू हो जाए। एक और छोटा बर्तन लें, उसके अंदर ये सोप बेस छोटे छोटे टुकड़ों में, जिस तरह आलू काटते हैं ना छोटे छोटे, जिस तरह बर्फ के टुकड़े होते हैं या आलू के टुकड़े, उस तरीके से काट कर उस बर्तन के अंदर ये सोप बेस डाल दें। अब जो भाप से जो गर्मी पहुंचेगी ना ऊपर वाले बर्तन को, तो वो सोप बेस पिघलना शुरू हो जाएगी, पिघलते पिघलते अगले 10 मिनट के अंदर वो सारा का सारा दूध बन जाएगा आधा किलो। वो जो आप सोप बेस ले आए थे हार्ड किस्म की साबुन था बिल्कुल, आपने हीट दी वो दूध बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आप कौन सा साबुन अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि गर्मियां हैं तो हमने जाफरानी साबुन बनाना है। सोप बेस आपकी पिघल चुकी है आधा किलो, आप पसारी के पास जाएं, उसे बोलें कि मुझे 300-400 रुपए का जाफरान दें, वो आपको दे देगा। उसे बोलें 100-200 रुपए का मुझे जो है संदल पाउडर दें, वो दे देगा, साथ में बोल दें 500 रुपए की मुझे हल्दी भी दे दें। अब तीनों चीजों को आपने क्या करना है, एक अलग से पानी में डालकर उबलाना है, और जैसे वो उबल जाए, सोख हो जाए ये तीनों चीजें, तो उसी अमेजिस को आपने उस दूध के अंदर डाल देना है जो आपने सोप बेस को हीट दी थी और वो पिघल गई थी, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास साबुन का कोई सांचा है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्पोजेबल ग्लास जिसके पास मिलते हैं उनके पास छोटे छोटे कटोरियां होती हैं जिनके अंदर छोटी आइसक्रीम वगैरह डलती है, तो उसी के अंदर डाल दें, ठीक है जना। 20 मिनट के अंदर आपका साबुन तैयार हो जाएगा, इसी साबुन को आप इस्तेमाल करें। ये खुशबू जाफरान की अपनी होती, चाहे तो किसी अतर वाले के पास चले जाएं, उसे कहें कि 50 रुपए की खुशबू दे दें, कोई अच्छी सी खुशबू शामिल कर दें। कलर शामिल करना चाहें तो पंसारी के पास जाएं और उसे बोलें कि भाई आपको फूड कलर दे दे, 20 रुपए का फूड कलर आता है। यानी कि ये आपको मैंने मुकम्मल तरीका बता दिया। अब यही इसी तरीके से हम आपको साबुन बना के दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह जो है हमने ज़ाफ़रान को बताया, ज़ाफ़रान संदल, और इसको आपने इस तरह डाल देना है, उसके बाद सांचे में डालेंगे, बस छोड़ दें, 20 मिनट के बाद साबुन आपका रेडी हो जाएगा। ये तरीका है साबुन बनाने। आप चाहें तो इसी साबुन को आप अपने लिए इस्तेमाल करें, और चाहें तो इसी को आप पड़ोसियों में, मालेदारों में, रिश्तेदारों को बताएं कि भाई हमने ज़ाफ़रानी साबुन बनाया। इसी तरीके से राइस का साबुन इस तरीके से बनता है, आपने जो है चावल का आटा बना लेना है, और जैसे सोप बेस पिघल जाए तो उसके अंदर आपने डाल देना है जनाब, आपका राइस का साबुन तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से उपटन का इसी तरीके से बनता है, नीम और टी ट्री का भी इसी तरीके से बनता है। नीम के पत्ते ले लें, उनका जूस बनाकर सोप बेस के अंदर डालें। मेन चीज क्या होती है साबुन के लिए, सोप बेस होती है। सोप बेस अगर आपके पास आ गई है तो आप हर किस्म का साबुन बना सकते हैं। उसके बाद हर किसी के पास मोबाइल है तो आप जो है नेट से मालूम ले सकते हैं कि मैंने छाइयों का बनाना है, मैंने व्हाइटनिंग का साबुन बनाना है, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, और उसमें ये कहा जाएगा कि सबसे पहले आपके पास सोप बेस होनी चाहिए, उसके बाद ये चीजें आप बाजार से ले लें। तो केसन ने आप लोगों को सोप बेस प्रोवाइड कर दी है, और इतनी जबरदस्त झाग वाली सोप बेस है कि झाग खत्म नहीं होगी। आधे किलो की पैकिंग में अवेलेबल है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, अब उनकी हमने ये मुश्किल खत्म कर दी है। आप केसन की जो सोप बेस है हाफ के जी के अंदर, वो आप हासिल कर सकते हैं अपने बाजार के अंदर, शहर के अंदर, डेर इस्माइल खान में मौजूद हैं, तो आप मेन शॉप केसन की धूप रंग केसन शॉप पर तशरीफ ला सकते हैं और यहाँ से सोप बेस हासिल कर सकते हैं। इसी के अलावा अमान हारसेरा, फारूक हारसेरा, वकास गुलजार मस्जिद के सामने है, या इशरत आर्ट प्रेस के सामने हप हप वालों की जो दुकान है जहाँ से तेजाब वगैरह मिलते हैं, वहां पर बहुत बड़ी सेल है हमारी सोप बेस की, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। गुलशन कैश एंड कैरी है जनाब, यहाँ पर आपको हमारी सोप बेस मिलेगी। इसी तरीके से शीश महल, अल करीम कॉस्मेटिक, डेर इस्माइल खान की बात कर रहा हूँ, ठीक है जनाब। गोम मार्केट के अंदर जो है शीश महल है, मक्का कॉस्मेटिक है, अल फरीद कॉस्मेटिक है, या फिर A1 कॉस्मेटिक है, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है केसन की हाफ के जी सोप बेस आपको मिलेगी, जिसको आप अपने पर्पस के लिए, सोप बनाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। अगर यह सब आपको मुश्किल लगता है और आप कहते हैं कि नहीं इतना हमसे नहीं हो सकता, तो फिर आप लोगों के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। केसन का जाफरानी सोप मौजूद है, 250 रुपए में आपको मिलेगा, जिसके अंदर जाफरान, संदल और हल्दी को शामिल किया गया है, और ये दोनों तरह के काम करता है। ये व्हाइटनिंग सोप भी है, ये जो है एंटी एजिंग सोप भी है, और ये एंटी एक्नी सोप भी है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी मौजूद है तो ये बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी करता है। संदल चूंकि इसके अंदर मौजूद है तो आपके जिस्म की बदबू को भी खत्म करेगा, आपकी स्किन को ठंडक प्रोवाइड करेगा, और आपकी स्किन को बहुत ही प्यारा बनाएगा। साबुन आप लोगों ने बहुत सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आपने इस तरह के सोप कभी नहीं इस्तेमाल किए होंगे जो केसन के सोप हैं, जिस तरह जाफरानी सोप है, गोट मिल्क सोप है, राइस सोप है, इसके अलावा टी ट्री यानी कि गो पिंपल सोप है, और मुख्तलिफ किस्म के हमारे 7 किस्म के साबुन है। तो इनका एक अपना मजा है, क्योंकि जनाब इनकी बनावट नेचुरल होती है और नेचुरल तरीके पर बने, उसके अंदर किसी किस्म की मशीनरी का इस्तेमाल हरगिज नहीं होता। केसन के जो साबुन हैं, इनके अंदर किसी किस्म की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, ये हैंड क्राफ्टेड हैंडमेड सोप हैं। कॉलर इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, 4:29 हो चाहते हैं, और पहले कॉलर हैं हमारे साथ, और इनको वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम चाचा फतेह खान, किवे हाल है
1: सही? साहब कमान क्या हाल है पत्रिका?
0: अल्लाह दे शुक्र है चाचा, तुसा सुनो ठीक ठाक ही?
1: तुसा कमान पत्रिका क्या हाल है?
0: प्रोग्राम सुन दे बैठे हुए, ओके तरीके थे कि सोखे तरीके थे, पहले दसो।
1: खैर खरी बात है, अल्लाह की मेहरबानी है,
0: ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜੀ
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਰਖੂਰ ਕੋ ਕੋਈ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ
0: ਰਾਜਾ ਗਫੂਰ ਆਪੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ
1: ਰਾਜਾ
0: ਗਫੂਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਈਆਂ ਬਹੁ ਹੀ ਕਮਾਲ
1: ਦੇ
0: ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਗਫੂਰ ਕੋ ਆਖਸੋ ਕਿ ਚਾਚੇ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਕੇਸਨ ਦਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਸਾਬਣ ਵੀ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਸਨਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੇਸਨ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ

छत उड़ती है, बैठती है, शरारतें करती है, और ये उसको देखकर बड़ी रश्क इसको आता है और कहता है कि यार ये कितनी खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, इसको किसी चीज़ की डर नहीं है, देखो लोग इसे देखते भी हैं, ये उड़ती है और बच्चे देखते हैं। तो उसके पास कहते कि तू कितनी खुश नसीब है, तितली से कहा। कह रहे भाई कैसे खुश नसीब हो कि कितनी खुशहाल है, तो कितनी खुश है, देखो पौधों पर उड़ती है, बैठती है, फूलों के साथ खेलती, शरारतें करती है। उसने कहा मैं तो खुश नहीं हूँ। का क्यों? का मेरी तो इतनी थोड़ी सी जिंदगी, चंद दिन जिंदगी है, फिर तो मैं मर जाती हूँ। कमज़ोर पर हैं, थोड़ी सी हवा आती है, पर टूट जाते हैं, बच्चे पकड़ लेते हैं, धागों से बांध लेते हैं। हाँ जी, इतनी हवा आती है तो हवा के दोष पे पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ, पत्थरों से और टहनियों से टकरा जाती हूँ, नन्ही मखलूक हूँ, तो मेरी खुशी कहाँ है? हर वक्त मुझे कम उम्र का, यानी बहुत कम दिन होते हैं जिसमें मैं फिर कुछ दिनों के बाद मर जाती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है, तो मुझे ये डर रहता है और मैं अक्सर उदास रहती हूँ कि आज मरी और आज मरी, आज नहीं तो कल मरी, अगले पल मरी, तो इस अंदाज़ से हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। तो ये तो फिर हैरान हो गई कि ये तो तितली भी खुश नहीं है। तो तितली ने कहा कि मैं तो खुश नहीं हूँ, हाँ अगर आप कहती हैं कि मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन बात यह है कि जो शहद की मक्खी है ना, शहद की मक्खी ये बहुत ज़्यादा खुश है, शहद की मक्खी, मुझे लगता है तितली ने कहा कि मुझसे ज़्यादा, मैं तो परेशान हूँ, शहद की मक्खी जो है वो बहुत खुशहाल है, बहुत मतलब उसकी बड़ी कदर व कीमत है और बड़ी ऐसी ग़िज़ा बनाती है कि क्या बताएं, ऐसी खुराक नायाब किस्म की। तो वो चींटी कहती कि चलो तितली तो खुश है नहीं, चलो शहद की मक्खी के पास जाकर हाल लेते हैं कि उसकी क्या कारगुजारी है। तो वहाँ जाके कहती है चींटी कि कितनी, शहद की मक्खी से कहा कि तू कितनी खुशहाल है, तो कितनी खुशकिस्मत है कि तू इतनी ऐसी खुराक बनाती है जो हज़ारों साल जिस पर गुजर जाएँ शहद ख़राब नहीं हो, तो आप ऐसी ग़िज़ा बनाती हो और कई बीमारियों की इसमें शिफा है, तो आप कितनी खुश नसीब हैं कि फूलों पर बैठती हैं, उसका रस चूसती हैं और उड़ती हैं हवाओं में, तो बड़ी खुश नसीब हैं। तो उसने कहा मैं तो खुश नहीं हूँ। कहा क्यों खुश नहीं हो, खुश क्यों नहीं हो, आपको इतनी खूबसूरत ज़िंदगी और ऐसा। उसने कहा उदास लहजे में कहा कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं उदास हूँ। कहा क्यों? कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कहा आपकी ज़िंदगी कैसी मुश्किल है? कि मैं कि सारा दिन भर मेहनत करती हूँ, उड़ती हूँ, फूलों पर बैठती, एक फूल से दूसरा, दूसरे से, सारा दिन चमन के फूलों में उड़ती उड़ती बैठती हूँ और रस चूसती हूँ, और अपने वज़न से 500 गुना ज़्यादा रस फूलों से चूस कर छत्ते में लाती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और एक चम्मच शहद बनाने के लिए मुझे 2000 फूलों से रस निचोड़ना और चूसना पड़ता है। क्या एक चम्मच शहद बनाने के लिए 2000 फूलों से मुझे रस निचोड़ना पड़ता है, और उसके बाद फिर ये, उसने कहा ओहो, अब ये हैरान परेशान है, कहता है कि 1 पाउंड अगर शहद मैं बनाऊँ, शहद की मगी कह रही है ऊँची से, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मुझे छत्ते से फूलों तक 37,000 मरतबा चक्कर लगाती हूँ। अब चूंटी हैरान है, परेशान है, हैरत में है कि इसकी तो और मुश्किल कहानी, इसकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। शहद की मक्खी ने मेरी ने कहा बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, बड़ी थकान, और कभी तो लोग ऐसे होते हैं कि शहद मैं बनाती हूँ सारा दिन, और लोग आते हैं उसको काट कर ले जाते हैं, खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ले जाते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मुझे भी साथ मार देते हैं, कत्ल कर दें, तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हाँ अगर ज़िंदगी किसी की खुशहाल है और पुरसकून है तो वो खरगोश की ज़िंदगी है। शहद की मक्खी ने क्या कहा कि वो खरगोश की ज़िंदगी है। तो उसने कहा कि वो आज़ाद है, अपने जंगलों में रहता है, तो उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो ये तितली खरगोश के पास जाती है, वहाँ पहुँचती है और उसे हाल अहवाल लेती है कि कितना खुश नसीब है तू कि जंगल में आज़ाद घूमता है, तेरे ऊपर कोई कैद नहीं, जब चाहता है घास, सब्ज़ घास, दाएं बाएं हरे भरे खेत हैं, इसमें खुद से वहाँ पे आपने सुराख और बिल बनाए, वहाँ पे जाके बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो कितने खुश नसीब हो और उछल कूद कर रहे हो। तो खरगोश ने कहा मैं तो खुश नहीं हूँ। कैसे खुश नहीं हूँ यार, ये देखो आज़ाद ज़िंदगी। उसने कहा नहीं, का चींटी ने, तो उसने कहा कि अपनी मज़े की ज़िंदगी तो जी रहे हो, किसी पर कोई कैद है, कोई डर खौफ है? कहाँ क्यों नहीं है। खरगोश ने कहा डर तो है,
कान हिलाकर कहा, डर है, बहुत सी मसाले परेशानियां हैं। कैसी परेशानियां? उसने कहा कि जहां के मेरी जैसी

0: are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं 0313 91 27 273।

अमन रेडियो 88.4 बोलो अरविंदन कोता सलामुना सलामुना सलामुना चरंगा चाल रजी शेयो ठीक ठाक जोड़ियो मछियो तकड़ायो।

0: Music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
0: Your music, your request.
1: This is Radio Station. Radio Aman.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
3: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4

आवाज यो के दिजी वन नेशन पर नियाले डिहान के जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सी अडीना मनन ची वजह थाना सरंगी शी जोड़ी बरबारी वक्तुन में से जुने दिशी दिसवाना

ओके जी, दस दिली स्परी सिनेमे का आरकड़े दे जाना जाना जाना जनान को माँ दे गुलगुजार कड़े दे जमा जमाना नशी नूरी नूरी ऐ जमाना नशी नूरी नूरी नशुंडी श्री नस्तर की तूरी ऐ जमाना नशी नूरी नूरी न शुंडी श्री नस्तर की तूरी ऐ ब्याक जमा जड़गी तो गूरी ऐ जमाना नशी नूरी नूरी नशुंडी श्री नस्तर की तूरी ऐ ब्याक जमा जड़गी तो गूरी और माला वधमक व मूरी और खसी द मेंदुना जमन जुदा कभी ना ऐ जमाना नशी नूरी नूरी نشون ڈسری نستر کی تورے اے بیاک زماز اڑگی تا گورے اے مالا و دمک و مورے اور خسی دا میندونا زمن جدا کوینا